0: कैट, कैट माने बिल्ली।
1: आर ए टी रैट, रैट माने चूहा।
0: सी ए टी कैट, कैट माने चूहा। अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ।
2: ए मैड, मैड माने पागल।

0: G-O-A-T, goat. Goat माने बकरी, L-I-O-N, lion. Lion माने शेर, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ?
1: Hey,

0: होते हैं।
1: अरे वाह मजनू,
0: लैला लैला करेगा लैला ओ लैला, लैला लैला करेगा ठंडी आहें भरेगा। चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तुम

0: हमको दूर हो के अजी क्यों ना सताओ हमको, हम जिए कैसे भला ये तो बताओ हमको।
1: डूब मरो
0: डूबेगा नहीं तरेगा, डूबेगा नहीं तरेगा, प्यार से हम नहीं डरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा,
2: हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, अरे हम तो मोहब्बत करेगा। किशोर कुमार सॉन्ग, मोस्टली किशोर कुमार, बट चॉइस वर्ड्स बिटवीन वर्सेस बाय नूतन इन द सॉन्ग एंड बाय द शी इज वेरी इरिटेटेड द स्टार्ट ऑफ सॉन्ग एंड शी इज पैसिफाइड बाय द एंड ऑफ द सॉन्ग। द नेक्स्ट थ्री सॉन्ग्स कम फ्रॉम मूवी यहूदी, फर्स्ट टू आर लता मंगेशकर सोलोज एंड थर्ड वन इज मुकेश सोलो। दिस मूवी यहूदी is a story set in the era of Roman Empire or more than 2000 years ago, centers on the point of persecution of Jews at the time of the Roman Empire center in Rome. Dilip Kumar is Prince Marcus in the movie, is the son of Roman King Murad, plays that role. Meena Kumari, Lydia in the movie, is daughter of the governor of Rome. Nazir Hussain, he's Brutus in the movie. And kidnapped by Sohrab Modi, Ezra, I mean, this movie has humongously impactful dialogues between Nazir Hussain and Sohrab Modi. I mean, I've seen this movie probably a handful of times and I can't get over with the potent dialogues between Nazir Hussain and Sohrab Modi. Anyway, Sohrab Modi is a jeweler. He abducts Meena Kumari in revenge for his son's death. And Dilip Kumar is scheduled to be married to Nigar Sultana, supporting actress. She's the Princess Octavia in the movie, but falls in love with Hannah, Meena Kumari, and does not know that he's Prince of Rome, and all kinds of things happen. This is a Bimal Roy-directed movie, by the way, based on the play Yahudi Ki Ladki by Aga Hashar Kashmiri, and a classic in Parsi Urdu theater about persecution of Jews in the Roman Empire. Movie has a very good soundtrack. Shankar Jackson scored the music. Shailendra and Harshad Jarpuri shared the lyric writing responsibilities. The first two songs I want to play for you are Lata Mangeshkar solos. हो दिल में प्यार का तूफान, ना जाने कोई ना समझे कोई नादान, जालिम घूर घूर के देखे दूर दूर से, दिल में प्यार का तूफान। पिक्चराइज्ड इन द रॉयल कोर्ट यार्ड एंड अ डांसर इन अ ग्रुप डांस काइंड ऑफ सेटिंग, दिलीप कुमार, निगार सुल्ताना, नजर हुसैन मुराद आर प्रेजेंट। द सेकेंड लता मंगेशकर सोलो फ्रॉम द मूवी बिनाका नंबर 4 इन 1958, पिक्चर्स वेरी हैप्पी मीना कुमारी हु हैज फॉलन इन लव विद दिलीप कुमार एंड हर गर्ल फ्रेंड्स इंक्लूडिंग मीनू मुमताज, मेरी जा प्यार किसी से हो ही गया है, हम क्या करें। एंजॉय द टू सॉन्ग्स।